पावन भक्त वचन कृपाण दान वचन कृपाण दान पंथ दे वाली अमृत के दादे सर्व संदानी शेरे बहादुर जी शमशेरे बहादुर जी धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाह जी गोविंद सिंह साहब पातशाह जी पावन पवित्र धाम तथा सच खंड श्री गुरु श्री अर्जुनगर साहब जी विखे अर्जुनगर साहब जी विखे जुगो जुग अटल शब्द अवतार कल शब्द अवतार के जहाज बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी है मन सारे बाणी अमृत गो सारे कह से गुरु बन मन सिख जनु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे सब पातशाही आदि आत्म जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दसम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरां दी पवित्र हजूरी विच सुभाए महाराज हजूरी विच सुभाए गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी खालसा साध संगत वड्डे भागां वाले हां वड्डे भागां वाले हां सचखंड श्री हजूर साहब दे दर्शन नगर सिंह दा सुभाग समां प्राप्त होया है समां प्राप्त होया है अज और महान बाबा बंदा सिंह जी बहादुर बख्शे सन जादू टूने आत्मक तौर ते उच्चा नहीं सन कर सके तौर ते उच्चा नहीं सन कर सके पर पूरा सतगुरु पर बोला पूरा गुरु त्यो बट भागी त्यो मन पया परगासा मन पया परगासा सलगी दर पादशाह आज के बरगे पादशाह दी छोड़ी विच बंदे पादशाह दी छोड़ी विच बंदा घर जिथे अज गुरु घर मौजूद है अज गुरु घर मौजूद है माधव दास चेलिया ने जाके दस्या के बड़ा तेज धारी राजा महाराजा बैठ गया ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਬੱਕਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਲਕੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ

सब मिलेंगे बजे चल जो उड़के सभा मिले सीता कोला प्रसाद डंका बाजे बने का नय गंगा चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुक्त जय वासु रंग सर्वदा सर्व जगत रुकालक बना चित काल स्वरूप सदा संग एवं अनुभव देख को बदन सर्व वेद आप दे जनान गुरु गोविंद सिंह जी तेरे काल की सहाय दरबार में तेरे दरबार सत गणम से अलंकार लक्ष्मी करी तुमने दरबार सब

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीध सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन।

जग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर मूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच वच को करेंगे।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है। के ते गंग बासी के ते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जक जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बटे बोध हारे बुद्ध के प्रबोध हारे जापसी। खस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार बूझ हारे पाहर चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटलीब हारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बचाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

अजोनी स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप देखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानु कहे मैं नावे न रोगं न शोकं न मोहं।

न नेहं न गेहं स नेहं स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदं अभेदं।

कहूँ त्याग गृह कहूँ जोग भोग कहूँ रोग राग कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्याग कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीत कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी

लो तब ताप करे नहीं न कृपान पान परे। जय फोकट धर्म सफेद जह एक चित्त कृपानित को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं।

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानिए, नराग रंग रूप है, नरूग राग रेग है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेग है, न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधिक से भेग है सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववरण है, जिमी जमाल के विखे सदीव करम भरम है, अद्वेख है अभेक है, अलेख नाथ जानिए।

गंज आद देव है कहो सो कैस पाई है। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाड है, न घाट बाड होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानी है, मकीन है और मकान है, अप्रमान तेज मानी है, न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है न

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न शीत है न सोच है न ख्राम है न खाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है।

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम विज है सदा।

भाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है।

सेध नाम सहंस वर्ण है नेत पूरण होत। सोद सोद हटे सफय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महाकप गड़त गाड़े अनंत, हार हार कहियो सबु मिल नाम नाम दुरंत। वेद वेद न पायो लखियो न सेवक देव, देव दानव मूढ़ मानो यछ न जानय जेव।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत्त मथे कावरू कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन

तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते बसार जद बभूत अनभय अनंत तव कहो जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच के नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए हंसिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छय स्वरूप करुणा निधान कामर कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छय स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भी कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल ऊर्ध्वं बृहत् सिद्धं।

मनो कर दे कर पाप शंभु न भेट न पावे। और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही गे बट बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुर आनंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो जगह सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान वेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाय सके अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद वेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए वह दान महाव्रत धारे। देश फिर कर भेष बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुखकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कपित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरण के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया हैं कटैया जय मजाल हैं। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय जावे गुर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने गंधारी कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रुहेले माघ देश के मंगेले वीर भंग सी बुद्धेले बाप पुंज कोमलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे देव तिथे आये दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे धायो तिन्हें पूर्ण प्रताप वायु सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सादा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचात है चिटी की जिंघार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते सस राशि कहते सूरज प्रकाश कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते व्यास प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है। करते है विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार वह अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जागी बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है राज सी को जंत्र है मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है राज सी को सर है शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है। कामना की खान है साधना की शान है विरक्तता की बान है बुद्ध को उतार है। सुंदर स्वरूप है भूपन को भूप है रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काव को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। योग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है या देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजा

गुर अर्जुन विघ्नन के नासक, हर गोविंद शुभ मत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी।

श्लोक महला पहला सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मंड सत्य तेरे लो सच्चाकार सच्चे तेरे करने सद्विचार सत्य तेरम सत्य दिवान सच्चा तेरा कर्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा के लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे।

0: पहला पहला विस्मादनाद विस्माद वेद विस्माद द्विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फिर दंत विस्माद पौन विस्माद पाण विस्माद निखेड विडाणी विस्माद दर्त विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी
1: विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद विस्माद पो विस्माद सिपत

राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम